गायो नही जन्म अकार्त कीने कहो नानक हर बचमना जे बिद जल को मीना विख्यासियो कहे रचियो निमिक न होय उदास को नानक बज हर मना परे न जम की फास तरना पो ए ही केओ लियो चरा तन चीता कहो नानक बज हर

का अपन तरह और न ले तू उदाहर जो सुपना और फेंकना ऐसे जग को जाना इनमें कछु सचो नहीं नानक बिन भगवान निस्दिन

Jagadachinata sir chi konanika sunurmita prani kachuna chetehi madmaya ke anda kohananika binahar bachana partataya jim fanda josukko chahe sada sarnaram kilehe kohananika sunare mana turlabman kdehe maya karna davhi मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हार बचन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन बचे रूप राम थे जान कहो हर चन हर अंतर नहीं नानक सच्ची मान मन माया में फद रहियो बिसरियो गोबिंद नाम कहो नानक बिन हार बचन जीवन कोने काम प्राणी राम न चेते ही मद माया के अंदर कहो नानक हर बचन बिन

हर पद जिबन बिरता सभी मान करनो हु तो सो न कियो परियोस लोभ के फंद नानक समयो रम के ओ अब क्यों रोव द अंद मन माया में रम रहो निकसत नाहिन मीत नानक मूर्त चित जियो चाहत नाहिन बीत नर चाहत कच औरे की औरे बई चित्तवत रहो ताकुरा नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए जगत भिखारी फिरते है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरते है पूर्ण होवे काम झूठे मान कहा करे जग सुपने जियो जाना इन में कछु तेरो नहीं नानक के ओ बखान करब करत है देह को बिन से बिन में जी मीत जे प्राणी हर जिसके हो नानक ते जग जीत जे कत सिमरन राम को सो नर मुक्त जान ते नर हर अंतर नहीं नानक सच्ची मान एक भगत भगवान जे प्राणी के नाय मन जैसे सुकर स्वान नानक मनो ताहे तन स्वामी को ग्रह हो जियो सदा स्वान तचित नहीं नित नानक एब दहर बच्चो एक मन हो एक चित तीर्थ परत अर्थान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल चाहते है जियो कंचर स्नान सिर कंपियो पग तग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक ए बिद पेई तो हो न हर रस लीन निज कर देखियो जगत में को काहो को ना है नानक थिर हर भगत है ते रखो मन माए जग रचना सब छूट है जान ले ओ ले मीत कहो नानक थिर न रहे जो बालू की बीत राम के हो रावण के हो चाको बो परवाओ कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जियो संसार चिंता था की खींची है जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को हो नानक थिर नहीं खोए जो उपजियो सो बिन्स है परो आज के काल नानक हर गुण गाय ले छाद सगल जंजाल दोहरा पल छुत कियो बंधन परे कछु न होत उपाय कहो नानक अब ओत हर कच जियो हो सहाय पल हुआ बंधन छुटे सब किच होत उपाय नानक सब किच तुमर है हत में तुम ही होत सहाय संग सखा सब थच के को न निभो सात कहो नानक ए बिबत में देख एक

जगत में किन जपियो गुरमंत राम नाम उर मह कहियो जाके सब नहीं खोए जे सिमरत निकट संकट मिटे दर्श तुहारो होए मुंडावनी महला पंजवान ताल विचित्र वस्तु पहियो संत संतोक विचारो अमृत नाम ठाकुर का पहियो जिसका सबसे आधारो जेको खावे जेको पुंछे जिसका होए उधारो ए

कष्ट तची नहीं चाही नित नित रख उतारो तम संसार चन लग तड़िए सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक मेला पंचवान तेरा कीता चातो नाही मैंनो जोग कीतोई मैंने

नाम कर्ता पुरख निर्भो निर्भर अकाल मूर्त अचूनी सपंगुर प्रसाद जप आर सच जुगार सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न हो भई चे सोची लखवाड़ छुपे छुप न हो भई चे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी चे पन्ना पुड़िया भार सैस स्यान पाला कहोए ता एक न छले नाल किव सच्यारा होए किव कूड़े टूटे पाल हुकम लचाई चलना नानक लिख्या नाल हुकमी होव न अकार हुकम न कहया जाए हुकमी होव न जी हुकम ले वड़ियाई हुकमी उत्तम नीच हुकम लिख दुख सुख पाए एक ना हुकमी बख्शीश एक हुकमी सदा भाए हुकमे अंदर सबको बाहर हुक्म न खोए नानक हुक्मे जे पूछे ता हुमे कहे न खोए गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडिया या चार गावे को विद्या विकम विचार गावे को साज करे तन के गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेके हदर हदूर कत न खत्ती न आवे तोट कत कत खत्ती कोट कोट कोट देन दान देन देन देन थक पाहे चुका चुकांतर खाई खाए हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक बिगसे बेपरवाहो सच्चा साहेब सच्चा नाही पाख्या भाव अपार अखे मंगे दे दे दात करे दातार फिर के अगे रखे चित दिसे दरबार मोहो के बोलन बोले है चित सुन तेरे प्यार अमृत वेरा सच नाओ वर्याई विचार कर्मी आपे खबर नदरी मोख द्वार नानक एवे जानी है सत आते सच्यार थपिया न जाए गीता न होए आपे आप निर्जन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक काव्य गुनी निधान काव्य है सुनिए मन रखिए भाव दुख भर हर सुख घर ले जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहिया समाई गुर ईश्वर गुर गौरक परमा गुर पार्वती माही जय हो जाना आखा नाही कहना खतन न जाई गुरा इक दे पुचाई सपना जिया का एक दाता सो में विसर न जाई गोड़ा एक दे पुचाई सपना जिया का एक दाता सो में विसर न जाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दसह पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सप्ताई होय सहाई। दसह पातशाह दी जोत दन दन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार ध्यान तरखे।

प्राणसखाय हर कीरतहमरीरस रहौ हर जनके वड भगविद्यारे वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सहे मिल संगत कुन परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते बगहीन जाम पास जो सतगुर सरन संगत नाही आए दृग जिवे दृग जिवास जिन हर जन सतगुर संगत पाही तिन दुर मस्तक लिखिया लिखास दान दन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास अराग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितावे उदम जा आहार हर जियो भरिया सैल पथार में जंत उपाय ठाका रजक रिजक आगे खर दारिया मेरे मदाओ जी सतसंगत मिले सोतारिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे कसट हरिया रहो जानन पित लोक सूत बनित कोई न किसकी तारिया सिर सिर रजक संभाहे ठाकुर काहे मन बो खारिया उडे उड आवे से खोसा तिस पाचे बचरे छारिया तिन खावन खलावे खावन चुकावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर थलदारिया जन नानक बल बल सद बल जाया तेरा अंत न परवारिया राग अस महला चौथा सो पुरख एकोंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजना हर पुरख निरंजना हर गामा गामा पार सब दियावे तुर जी हर सच्चे सृजन हारा सब जिया तुम्हारे जी तुन जिया का तरतारा हर दियाव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी किया नानक जंत विचारा तू गट गट अंतर सरबर अंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे छोड़ विडाना तू आपे दाता आपे भुगत जी हो तुर बिन अवर न जाना तू भर ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे किया गुण आक विखाना जो सेव है तुर जी जन नानक तिन गुरबाना हर दियावे तुर जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जिन हर दियाया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निर्बो दियाया जी तिन का बो सब कवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से दान जिन हर दियाया जी जन नानक थिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी बरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुर जी हर नेक नेक नंता तेरी अनेक कर है भर पूजा जी तप तपे जापे बेअंता तेरी अनेक फर बहु सिमरत शस्त्र जी खर किरिया खट खरम खर अंथा से भगत पले जिन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू तून आद पुरख अपरंपर करता जी तुर जे वड अवर न कोही तून जुग जुग एको सद सद तुन एको जी तुन निचला करता सोई तुद आपे बावे सोही वरते जी तुन आपे करे सोही तुर आपे शिष्ट सब उपाहे जी तुर आपे सरज सब गोही जन नानक गुण गावे करते के जी
Jo sabase ka janoi asamhela chota tum karta sachiharam heda sani joto bave soi tisi jotunate soi hopai raho sabateri tuna sabani diaya jisno kripa kare tena namaratana paya gurumukalada manamukakavaya tur apivachoria apamalaya tu dundario sabaturihi mahe tura bina duja koi nahe jiya janta sabatera kela vijoga mila vichoria sanjogi mela jisno tu jane ahe sohi jana jane haraguna sadhi akavikana jinahara sevya tina sukapaya sahajehi hara nama samaya tu ape karita tera kia sabahoi tura bina duja avarana koi tu karakara vekahe jana soi jana nanaka gurumuk paragatta hoi asamahela pela titta saravare bahile navasa pani pavak tine kia pankajamo bhaganahi chale hamadeka te dubiale mana ekana chetas moramana harabisarat tere.

मत होई, सतगुर साजन मिलिया, नानक नाम मिलै तन जीवन, तन मन तीवे हारिया। पूरी जिते तू समरहत जिते कोय नाही, ओटे तेरी राख अग्नि उदर माहे, सुन के जम के दूत नाहे, तेरे छाड़ जाहे, बोझल बकमस गाहो गुर शब्दी पार पाहे, जिनको लागी प्यास अमृत से खाहे, काल महे एहो पुन गुण गोविंद गाहे, सबसे नो कृपाल समले साहे साहे, बिरत कोय न चाहे ज आवे तुर आहे। श्लोक महला पंजवां, अंतर गुरु धारणा जीवा, जप गुरु नाओ, नेत्री सतगुर फेकना, सर्वाणी सुरना गुर नाओ, सतगुर से तीर हतिया दरगा पाया ताओ, गाहो नानक कृपा करे जिसनो एवत दे, जग महे उत्तम खडिया है विरले के कै। महला पंजवान, राख राखनहार हापुबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, ओहा पतयाल मन हो ना विसारियन, सरजना के संग बाव जल थारियन, सकत निंदक दुष्ट किन माए बदारियन, जिस साहेब की टेक नानक मन माए, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए, जिस तिस साहेब की टेक नानक मन माए, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।